भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनो वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीओ का नाम हरि हरन की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। सुनने वालों भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

अरविंद के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में सुरेश वटकर जी की ओर। सुंदर भजन जो प्रोग्राम में आपकी बार पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुरेश वत्कर के आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गणेश पाठक जी की आवाज में एक सुंदर भजन पे

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना गणेश पाठक जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो पेश की गए। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या तो कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है दुनिया की कोने।

रेडियो वेज में इसके जरिए सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। रेडियो वेज में इसके जरिए अभी आपने सुना भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है ये भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अनूप जलोटा जी के आवास में पेश की गई है।

रेडियो वेव्स में इसके जरिए सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो वेव्स में इसका पूरा और पूरा टीम के तरफ से हमारी तरफ से हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है सभी दुखित प्राणियों के लिए सभी बच्चों के लिए सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं काम करने वाले हैं सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो वेव्स में इसका प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

श्रिया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो पेश होगा अभिजीत और अलका जी की आवाज में, अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हल्का याग्निक और अभिजीत की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गीत जो आपकी बार पेश होगा अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में।

चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुनवलो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। शान और श्रेया घोषाल प्रोग्राम में

रेडियो SBS के जरिए खूबसूरत गाना शाना और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में KK की आवाज में

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो बीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो

Het programma 6 minuten bij dit hoe chuka hai 6 minuten over 9 aap sabhi sunne walon ko shubh subah shubh din pesh kiya ja raha hai jahan jahan par bhi aap sabhi program ko sunte hain main hu aapka khidmat guzar rabin yahan se purani filme sangeeton ka program aap sabhi sunne walon ki seva mein bas pesh kiya ja raha hai पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस

हमेशा आपके लिए बस पेश किया जा रहा है। तो चलिए आप सभी को सबसे पहले गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। यहां से हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर, जो आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: चल मौसम भी है वादा भी है उसकी गली का फासला थोड़ा भी है।
1: दमाईटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। इस खास पुरानी नगमे की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जिंदगी से प्यार करना सीख ले।

जिंदगी से प्यार करना सीखने आयशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सिडवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मन्ना डे और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चलिए अब की बार प्रोग्राम में हम आप भूले चलते हैं मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा।

ये दिल उदास होता है। मोहम्मद रफी एंड शारदा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो SBS का कंटूर का टेलीफोन नंबर 24 पर दाख बार एक बार होता है। किशोर कुमार एनाशा

0: हाथ प्यार का छूट नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
1: प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
2: किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम शेड्यूल है हॉलैंड देश से। बस ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले एक बार फिर से किशोर कुमार प्रोग्राम में, साथ में होगा लता मंगेशकर।

लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपका खिदमतगुजार अबीन। चले प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रो फूल बरसाओ मेरा महबूब जो आया है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी के बाद दमाइटी मुकीस प्रोग्राम में होगा। माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों की ख्यालों में, मुकेश जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार, द मैन विद अ फ्रीक्वेंट वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर एनाशम, किशोर कुमार एनाशम,
1: आओ ना

चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, छोड़कर तेरे प्यार का दामन।

चलिए अबकी बार द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश प्रोग्राम में

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
2: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।

रेडियो SBS की जरिए खास तौर पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर फिल्म का नाम फर्श

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक और गाना मरहूम मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, जरूर सुनते ही रहना।

गाना आप सभी ने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। काफी खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे लता जी की ओर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। लता के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है बाहरी फिर भी आएंगे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज के प्रोग्राम में एक गाना पेश होगा मुकेश किशोर कुमार एन महमूद के आवाज में। चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है हम जोली। द माइटी मुकेश, द मैन विद एफ ग्रीन वॉइस किशोर कुमार और महमूद के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: बेटी, ये भारत है।
0: फिल्म का नाम हम जोली।

0: अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो, मुश्किल बड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
0: यू मैं क्या बोली जी, यू टेल मी,
1: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी, मैं क्या बोली जी।
2: ओ बाप,
1: अल्लाह,
2: ओ दादाजी,
0: जी
2: मेरी बात तो सुनो
0: बेटे,
2: ओ बाप
0: जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो
2: बेटे, मेरी बात तो सुनो,
0: ओ बाप
2: जी मेरी बात तो
0: सुनिए,
1: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
3: द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश, किशोर कुमार और महमूद की आवाज में फिल्म हम जोली का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई खास तौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना भी आपने सुना। चले लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

गाना जो पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में मेरे दिल में हल्की सी, अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था परस मनी, उसी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अब की बार हेमंत कुमार।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। महेंद्र कपूर एनाशा, महेंद्र कपूर एनाशा जी की आवाज में ये गाना

हल्का जीती आवाज में ये गाना बुस्पाच की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। शुरू वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। आपकी तमाम फरमाइशें तमाम खबरें जो है सस्ती दामों में रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए अनुराधा पोटवाल एंड कुमार सान

Sanu Jeki Abbas Mim. Sudvalu Radio SBS ka website radiosbs.nl usi website ki zariye apna mobile telephone tablet iPad computer ki zariye hamara program ko aap sun sakte hain aur sabhi internet radio ki zariye usi Sudvalu bas hamesha rozana Radio SBS ka program ko follow kar rahe hain अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो आप सभी के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से

रेडियो SBS के जरिए जावेद अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार जो पेश किया जा रहा है

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अलका एंड उदित नारायण की आवाज में।

0: काबुल सुब्रियो की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

सेवा में पेश की गए रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामकाज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, सभी कामकाज किया जा रहा है। आप सभी का हर एक काम सस्ती दामों में बस किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0322 65 65 65।

अपना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सितारों का सितारा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं अभिजीत और खासतौर पर अलका जी की आवाज में। इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म का नाम है।

पेश की गए अभिजीत और अलका जी की आवाज में खास गाना जो अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई फिल्म का नाम था इंटरनेशनल खिलाड़ी। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए आज के प्रोग्राम में जावेद अली और श्रेया जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है खूबसूरत नख में। आज के प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना।

गाना जो पेश की गए जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार के नंबर पर बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते रहते हैं। मोहम्मद इरफान और साथियों की आवाज में ये गाना

जाने भी दे गाना बस प्रोग्राम में सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है जाने भी दे गाना जो प्रोग्राम में पेश हुआ है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। शान और साथियों की आवाज में ये गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शान और साथियों के आवास में प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे बस पेश किया जा रहा है कुमार सानू एंड साधना सरगम, इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म का नाम।

साधना सरगम की आवाज में खूबसूरत सा प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म खराम इश्क में जीना इश्क में मरना। तो चले अब की बार सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस पेश की गई सोनू निगम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अबकी बार उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले ये गाना की ओर और गाना का बोल है मुझे इश्क हुआ।

इसके जरिए अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66 एलवीसी तारकी नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं इश्क विश्क फिल्म का गीत की ओर। कुमार सानू एंड कविता, यह कहिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क विश्क फिल्म का नाम।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है, चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है शान और श्रिया जी की आवाज में

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से श्रेया जी की ओर और अपनी बार ये गाना

जब वी मेट फिल्म का नाम उसी है। फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। हमारी सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अलका याग्निक हरि हरन, अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है

हरी हरन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। कुमार सानू

मैं दीवाना का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में लता जी की आवाज में फिल्म दो बदन का ये गाना पेश किया जा रहा है।

में ये गाना पेश किया गया है। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।

सुहाना सफर और ये मौसम हसीन गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था फैशन। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था प्रेम कहानी। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुरानी नगमे, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये गाना फिल्म प्रोफेसर का।

गुप्ता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है कुर्बानी, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशुलि करमलाल, तो वार्ड वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

भूरे भूरे बादल गजोंहदर कुनाल गांजावाला एंड श्रेया घोषाल क्वाम आउट द फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार एंड इट फॉलोड लीचे इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर वीआर रेडियो एसबीएस इज आउट द फिल्म निका चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है दित प्रख्त लीचे इस गजोंहदर गुलाम अली.

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

चढ़ा दे रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है, इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

ना। दस बहाने करके ले गया दिल, द 2.0 फर्सीफ आउट द फिल्म बागी 3 इस गसंग दो शान, तुलसी कुमार, KK, विशाल दतलानी एंड शेखर अफजियानी। एंड दैट कम्स आउट द एल्बम तेरा चेहरा गसंग दो अदनान सामी खान, तेरा चेहरा जब नजर आए।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.